दबो, ये रहा बहुत है, यही करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो सुना ये कि ना वो तेरे को भी बोलने का हाल आते हैं।